पकड़ो उठ भगती लगा, उठ भगती लगा यार वे प्रिय हबे सखियां मुंह कहीं ना जेहियां यार वे हिक टू एक चार।

0: समस्ति स्वरूपे परपंकी परमाथे समस्ति बभूते
1: कलंकन बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रुजेश्वरं परम रूपे
0: नमो चोग जिगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रुजेश्वरं परम प्रीते
1: नमो शस्त्र पाणि नमो वस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: परमी अपोकी अपुक्ते नमो चोग जिगेश्वरं

0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समस्तु निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा वृत कर्ता अदो उर्धर दंग गंग उग हर्ता
0: परम परम परमेश्वर पोष बालं सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
1: अशेति अपेति नामंग कामं समस्तो पराजी समस्त स्थामं तेरा जोर चाचरी छंद
0: जले हैं थले हैं बीत हैं वे हैं
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पुचंग पयात छंद
0: आगादे आबादे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ती निदाने
1: नमस्तंग नाथे नमस्वंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे
0: नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्व देश

0: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीव नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्त प्रसिजे
1: बालंग स्वरूपे को कर्मंग पन्नासी सदा सर्वदारिद्र सिदंग निवासी चरपट शांत प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने
1: सर्वंग प्राणी सर्वंग त्राणी सर्वंग पुक्ता सर्वंग जुक्ता।

0: सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अगाध रूपे अनाध स्वरूप है नंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रिभंगं त्रिभादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे
1: मुक्त स्वरूप है चीज है छूत है के नरकंक पर नाश है पृथ्वी पर वास है
0: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है वर्जुत अनूप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनूप

0: कर कर प्रणाम चित चरणाम अंशिज गात आज जना बात
1: अंचंज गात अनरंज बात अनटुट भंडारण ठट पार
0: आज जीत धर्म अर्थ कर्म अनबन अनंत दाता महंत हर मूल मना संत प्रसाद
1: करुणालय है हर काले है कल खंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है
1: जग के धरने जग के करने मन माने जग जानिया है
0: सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है
1: करुणा कर है बेसंबर है सुरभेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है
1: अजपा जप है थप थप है कृता कृत है अमृत अमृत
0: है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धनी धृत है
1: अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृत अमृत है
0: अजपा कृत है अमृता अमृत है निर्नायक है कलकायक है
1: बेसंबर है करुणालय नायक है सर्वपायक
0: है भंजन है अरगंजन है रिप्रतापन है जप जापन है
1: अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कार है अर्था हर
0: है परमात्म है सर्वात्म है आत्म भस्य जस की जस है भुजंग पयात छंद
1: नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज

0: सात रूपे नमो इंद्र इंद्रेय नादंग बभूते
1: लंका रूपे लंकर लंके नमो आशा से नमो बांक बंके
0: भंगी स रूपे अनंगी अनामे तर भंगी तर काले अनंगी अकामे एक अच्छरी चंद
1: अजय अलह अपह अभ
0: अजू अनास
1: अगंज अपंज अलख अपख
0: अकाल दयाल

0: लेखे पुचंग पयात छंद।
1: नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे।
0: कामंग पूते समस्तल स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग पूते।
1: सदा सत्य सचिदानंद सतरंग प्रणासी कलिमल।

0: आप हाथ मुझे बरिया मरण काल का त्रासन बरिया
1: जो सदा हमारे पच्छा सिरिया सो जो करे हो रचा
0: राख लिहु मोहि राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे
1: दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
0: काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए सुजू अवतरा
1: काल पाए कर्म सन प्रकाशा सकल काल का किया तम

0: सोहिला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहिला शब्द गुरु सोनाया
1: इहो तिन कै मन वसिया जिन तुरू लिखिया आया
0: इक फिरे कनेरे करे गल्ला गली किनै ना पाया
1: कहे नानक शब्द सोहिला सात गुरु सुनाया
0: पवित होए से जना जिनी हर त्याया
1: हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया
0: पवित माता पिता कुटुंब सहज से पवित संगत सबाया
1: कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया
0: कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया
1: करमी सहज न उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए
0: ना जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए
1: सहसे जियो मलीन है कित संजम धोता जाए
0: मन तू बहु शब्द लागो हर स्यो रहो चित लाए
1: कहे नानक गुरु प्रसादी सहज उपजे ए सहसा इव जाए
0: जियो मैले बाहरो निर्मल बाहरो निर्मल जियो त मैले तिनी जन्म जुए हारिया
1: ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया
0: बेटा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे जो बेतालिया
1: कहे नानक जिन सत अज्जे

0: जग में आया।
1: हर आपे माता आपे पिता जन जियो पाए जग दिखाया।
0: गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया।
1: कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया।
0: मन चाओ प्या प्रभागम सुनिया हर

अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदानंद लेप जैसे जल में कमला लेप ब्रह्म ज्ञानी सदानंद धोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कहते समान जैसे राय रंगकुला के तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कहते तीर्ज एक जो बसुद्धा कहु खोदै कहु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे जल में ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान जैसे राय रंगकुला के तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी के तीर्ज एक जो बसुद्धा कहु खोदै कहु चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कहे गुनाओ नानक जो पाव का सहज स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होय प्रकाश जैसे तारु प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी युक्ति उचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सकल क्रीनातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कुछ बुरा ना पाया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारो महा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी का

ब्रह्म ज्ञान क्या करंग, ब्रह्म ज्ञान क्या बस है प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञान के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञान के नाम परिवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञान के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञान के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञान के नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का होय चिंत, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन

सतपुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाम तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अश्व सतगुरु सिखी कर कृपा सेवा को गुरु सदा दया सिखी गुरु दुरमत माला ही रे गुरु वचनी हर नाम सिरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुरु का सिख विकारते हटे सतगुर सिख को नाम तां दे गुरु का सिख गुड़ भागी है सतगुर सिख कल पल सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे गुरु के ग्रह से उजरे गुरु की आके मन में सहे

मन प्रबुद्ध हर कह नाय दादे साहब ते आवे ठाए ता को विघ्न लागे कोय जाकर दे वसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाम सिमर सिमर सदा सुख पाओ भोवन से पूर्ण यास भक्त पाया तुम प्रगास तिस कर जाय वसे अविनाशी को नानक काटी जम फांसी तत विचार कह संजात साजन अमरे सो का चो काचा आवागुण मिटी प्रभु से व्याप्त अक्षरण गुरुदेव रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमर प्राण धार अनुगोपाल न छुटन हारे सिमर साथ वे विचारे हर की बात करो मन लाए मन बंशत नान खोल पाए संग न चाल तेरे तन दुख्या लपटावे मूर्ख मना सोत मेत क्रम बलवंता इंते कौन कौन सनाथा राज रंग मै विस्तार इंते इंते कहो कौन छुटकारा सब सिर सवारी झूठा डम झूठ पसारे जिन दिए तिस बुझ न बिगाना नाम सार नानक पस्ताना गुर की मातुले आने भगत बनो बिना बडूबे सियाने हर की भगत गुरु मन मीत निर्मल होय तुम्हारो चीत चरण कुण राखुण माय जन्म जन्म के किलो खजाय आप जपो अवरण नाम जपाओ सुनत कैद रह कह पाओ सार पुत सर कुण आओ सस भाई नानक गुण गाओ तिर उतर समैल बिह जाय हमें भी फैल हो चंद सकनाल सास ग्रह सर नाम समाल छाड़ सियाण सगली मन सा संगावे सच धना हर पुंजी सच करो बिहारियां सुख दरगे जयकार सब निरंतर को देख कहो नानक जाके मस्तगले गे को जापे को सालायक सिमरे कुमण आए एक सके गुण गावनंत मतन जाप एक भगवान ते को एक करया पूर्ण पूर प्रव्याग अणग विस्तार एक ते भय एक रात विरासत गए मंतन अंतरे गुरु रात गुरु प्रसाद नानक जाता सलोक है।

आप गोवा पयादे सत गुण गाना ही प्रवेश जय कह के भगवंता त कौन अचन कुशला के चिंता जय अपने आप आप ते आरा त कौन कथे कौन सुन।

के अनुसार सफल जीवन सफलता का संग जा के मन लागा हर रंग जय जय सवतनाथ वाजे सुन सुन करे प्रभु गाजे परुटे गोपाल महत के माथे नान कुदरे दिन के साथे सरण जोग सुन सरण आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरे निमृत नाम सात संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होए सेव की सेव आल जंजाल विकार तेरे ते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद या प्रवधारी नानक निबही खेप हमारे प्रभु की सतगुरु संमीत सावधानी का कर चीत सुखमणि साध गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुत निधान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रदान प्रगट सब लोए सब ते उजवाय स्थान बहुन होए आवन जान हर तन खार चले जन सोए नानक से प्राप्त होए खेम शांत रित नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान से सुतम स्नान चार पदार्थ गुण प्रकाश सब के मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् कविता समदर्शी एक दिष्टिता ये फल तिस जन के मुख पणे गुरु नानक नाम वचन मन सुने दान जपे मन कोए सब जुग में ताकीगत होए गुरु गोविंद नाम तुन बाणी सुमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटे संत कृपा ते जम ते छूटे जाके मस्तक क्रम प्रभाए सा सर नानक ते आए

सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और

आगे फला इन्ही को दियो, जग में जस और दियो सब पीको, मोग्रह में मनते तनते सिर लाओ।

जहाँ बिसरै ठाकुर प्यारो ता दुख सब अपवाद, जहाँ बिसरै ठाकुर प्यारो ता दुख सब आपद, जहाँ है गुण गाए आनंद मंगल रूप तहाँ सदा सुख संपद, जहाँ सरवण हर कथा न सुनिए तै महा भयान उनया उदयानद, जय कीर्तन साध संग रसताय सगल बांस फलानद, बिन सिमरन कोट बरख जीवै सगली औद ब्रथानद, एक निमक गोविंद भजन कौर तौ सदा सदा जीवानद, सरन सरन सरन प्रभावों दीजै साध संग कृपानद, नानक पूरे होए सर्ब मैं सगल गुणान बिद जानद, सारंग महला पंजवां आप मोए राम परोसो पाए, जो जो सरन प्रयो करुणा निध ते ते पवै पतराए, रहाओ सुख सोयो वर सहज समायो सहज गुरै गवाए, जो चात सोई अर कियो मन बंशद बल बाए, हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो सरवणी कथा सुनाए, चरणी चलो मार्ग ठाकुर कै रसना हर गुण गाए, देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराए,